कथाओं नहीं तुझ ये है आ बदो पुरख विधाते आंखों सुहे जिठे सबे थाओ नहीं तुझ ये है आ बदो पुरख विधाते आंखों सुहे वसती सगन अपार अनूप रामदासपुर वसती सगन अपार अनूप रामदासपुर हरिहर नानक कसम।

दयाल होए मेरा स्वामी, किस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नाविक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की।

हिंदू पूजा कर दे और मुसलमान निवाज पढ़ दे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे ने, देहो राम मसीत सोई, पूजा हो निवाज हो ही। देहोरा और मसीह पूजा अते निवाज, इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे ने उन्हां दे मनां विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तों हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए, फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं, ये सिख धर्म दा ही उपदेश है। धर्म दे नां ते लड़न वालेओ सुनो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तुहानू की उपदेश करदे ने। ना मंदिर

राक्षस, जश, गंधर्व, तुरक, हिंदू नाम वक् हैं, पहरावे भी वक् है, देश भी वक् है, और इन चीजों का असर इंसान से होता है। पर सतगुरु जी कहते हैं अगर आप मन विच विचार करिए तो सानू किसी विच फर्क नजर नहीं आवेगा।

मुसलमान अल्लाह नु याद करता है, हिंदू राम नु याद करता है। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे ने अल्लाह दा नाम लेन वाले है, कुरान शरीफ पढ़न वाले है, मुसलमान नु ए उपदेश, हिंदू नु की उपदेश है? कुरान पढ़न वाले हिंदू है, राम नु याद करन वाले हिंदू, अपने मन विच ए विचार कर। एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है, वो अपने अल्लाह नु याद करता है। एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है, वो अपने परमेश्वर नु याद करता है। टंग दोनों दे अलग ने, एक निवाज पढ़ता है, एक पूजा करता है, पर ये सोचिए दोनों दा मकसद की है। मुसलमान अल्लाह नु याद कर रहे है, हिंदू अपने राम नु पिया याद करता है, मकसद दोनों दा

और हिंदू और मुसलमान दो वटिया कौमा और दो नादाई झगड़ा सदियां तो चलिया आ रहे है। पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन। भाई साहब जी बयान कर दे, चार वर्ण चार मजहबां

मन विच बखीली होवे, नफरत होवे, ते फिर मन विच प्यार नहीं हुंदा। ते साहिब जी बाणी द्वारा भी यही समझांदे ने कि मना विचू जे नफरत

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने। अति अगे भाई साहब की कहते हैं।

और कतेबा नू भुला दिता है। वेद की पूजा हिंदू करता है, कतेब नू मुसलमान पूजता है। भाई साहब जी कह रहे ने वेदा और कतेबा का उपदेश भुला दिता है और दुनिया जिहड़ी है देखो लालच विच फस के शैताना दे राह ते चल पई है। शैताना दा राह नफरत ईरखा दुबदा और झगड़े।

अल्लाह दे राम दे नाम नु समझिया नहीं, झगड़े पाले और जेड़ा ये जन्म मिले है झगड़े विच गवा लिया, और आवा गाउण दा चक्कर जेड़ा है ये उस तरह ही

जे सदियां तू चले आ रहे है ते सदियां तू उपदेश भी यही हो रहे है कि भाई क्यों लड़दे हो, इंसान रब दा रूप समझो ते जेड़े लोग शैताना वाला काम करते ने ओ ना दे राह छड़ दियो। भाई साहब जी बयान करते हैं मंदिर ढा के मसीतां बनाईया ने मुगलां ने, पर की मंदिर ढा के मसीत बनाने वाला अपने अल्लाह नूं प्यारा लग सकता है? कदी नहीं लग सकता। इत्थे एक गल याद रखनी, हर कौम दे विच भैड़े बंदे हुंदे हैं, पर सारियां कौमां नूं माड़े कह देना ये ठीक नहीं। हर कौम विच कोई ना कोई भैड़ा बंदा जरूर हुंदा है, पर सारी कौम नूं माड़ा कहना ये इंसाफ नहीं। भाई गुरदास जी बयान करते ने वो गल्लां जिहड़ियां इतिहास है और जो सच्चाई

इस पौड़ी दे विच भाई गुरदास जी ने इस्लाम धर्म का जो असूल है उहदे बारे दस्सिया कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा इह उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि इक जालम बादशाह सी उसने यह हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना। तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती, साडे हिंदू धर्म की रक्षा करो। तां गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा कीती। और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे ढाए जाते रहे भाई गुरुदास।

जिड़े जालम कोल शक्ति आ जाए ओ फिर गरीबां ते जुलम करदे ने मारन गऊ गरीब नूं धरती उपर पाप बिथारा और धरती ते इतने पाप हो गए इतने पाप कि सच लभदा नहीं सी राजे जुलमी हो गए वजीर पाप कमाण लग पए अपने भले वास्ते अपने फायदे वास्ते लोकां नूं लड़ाना लोकां दा नास कराना और आप खुश होना भाई साहब जी कह रहे ने

वड़े वड़े राजे वड़े वड़े नवाब वजीर इन्हों ने अपना की काम बना लिया राजभाग मिल गया लोगों नूं आपस विच लड़ाना और जद भी पता लगना किधरे सोहनी औरत है उस नूं हथियाण वास्ते हजारां बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देना राजियां दा वजीरां दा नवाबां दा एक काम रह गया औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े हजारां लोकां

कि मैं धर्मी हो गया। नहीं, भाई साहब जी कह रहे ने कि देखो इना राजियां महाराजियां दा वजीरां दा की काम बन गया, अपने फायदे वास्ते ए धर्म तो दूर हो गए और लोकां दा नाश करन लग पे।

पूजा हो निवाज होगी। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रब दा घर हन, इन्हां दा अपमान करना ठीक नहीं, क्योंकि एक पासे आपां कहने आ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये रब दा वाहेगुरु दा राम दा घर है, भगवान दा घर है, पर इंसान अज दा कहो जिहा हो गया है। एक पासे कहंदे ओ रब दा घर है, जद झगड़े आपस दे हों ते फिर इंसान जिहड़ा है ओ इस पासे तुर पैंदा है कि धार्मिक स्थान भी साड़न तों ओ गुरेज नहीं करदा। जिहड़े लोग धार्मिक स्थानां दा अपमान करदे हन कि ओ अपने धर्म दे नाल इंसाफ करदे हन कि ओ जिस रब दे नाल प्यार करदे हन अपने मन कोलो पुछन कि मेरे इस काम ते मेरा रब मेरा परमेश्वर खुश हो रहे है। अपने मन दे नाल विचार करो ते इस दा जवाब खुद मिल जाएगा।

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी ने दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे, आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

और दूसरे पास से ब्राह्मण ने उपदेश किया, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे, जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वह फिर जिधे भी जिस पासे भी देखेगा वह जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है हर पासे परमेश्वर है ते फिर किहदे नाल झगड़ा ते किहदे नाल लड़ाई, किहदे झगड़े खत्म हो जाणगे। और गुरु घर दा उपदेश है फिर ते इंसान इहो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किहदे नाल लड़ा सारे ते

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण चलो मार्ग गोविंद। ये केड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। वो मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर की उस्तुति करनी ओदे गुण गाउने। ये मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ये रचना पवित्र हो जाती है जदों नाम का अमृत पींदी है जपदी है श्री वाहेगुरु। निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर ले जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम का अमृत समा गया है उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु का परिवार नजर आते हैं। जे उदा परिवार है तो एक पिता एक सिखे हम बालक। साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसके बालक हाँ। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जाणगे। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

कला धार जगमय परवर। निरंकार आप गुरु नानक दे रूप विच संसार ते प्रगट होए, ते फिर ओही गुरु नानक अपने प्यारियां दी संगत विच, अपने प्यारे गुरसिखां दे विच दर्शन दे रहे है, ते शब्द रूप विच बैठा होया अपना विचार दे रहे। कदे साहब कलगीधर पातशाह ने कहा सी गुरसिखां नूं, सिखां ने पुछिया महाराज तुसीं तां शरीर करके साथों अलग होना लोड़दे हो, असी की करांगे। साहब कहन लगे की चाहुंदे हो कि महाराज दर्शन किदे करांगे, गल्लां किदे नाल करांगे, पूजा किस दी करांगे। साहब कहन लगे पूजा तां तुहानूं मैं पहलां ही एक अकाल दी समझा चुका, पूजा अकाल पुरख दी करनी, मेरा दर्शन करना है तां खालसे दा दर्शन करना, मेरे नाल गल्लां करनियां ने गुरबाणी दी विचार करनी, गुरु के बचना दे अनुसारी होगे, गुरु के बचना नूं ध्यान नाल पढ़ो सुनोगे, गुरु नाल गल्लां करदे जापोगे। इत्थे भाई साहब कहिंदे ओही वाहिगुरु अकाल पुरख गुरु दा रूप धारण करके प्रगट होया, ते फिर शब्द विच समा के बैठ गया, ते संगतां विच गुरसिखां विच बैठ गया। जद ऐसा होके बैठा है तां गुरसिखां दी मन्नेगा, साध संगत दी बेनती ते अरदास प्रवान भी करेगा, उन्हां दी लोड़ां दा ख्याल भी करेगा। भाई साहब कहिंदे नो करन कारण समर्थ वाहिगुरु साध संगत दा करे कराए, सारा कुछ उहदे भंडारियां च भरिया पिया, पर साध संगत दा दे दवाया, साध संगत जिन्हों चाहे दवा देवे, जो चाहे लै लवे। पार ब्रह्म गुर रूप होए साध संगत गुर शब्द समाया, पार ब्रह्म गुरु दा रूप होकर के साध संगत विच गुर शब्द बैठा है, जिसनू लोकां ने जग भोग जोग ध्यान कर अनेकां कर्म कांडा दे नाल अनेकां जतना दे नाल पूजा परे ना दर्शन पाया, किसे नू लब्भा नहीं, किसे नू दर्शन नसीब नहीं होए, गुरसिखां ने उन्हां नू लभ लिया, संगत विचों लभ लिया, गुरु शब्द विचों लभ लिया, और ऐसा लभिया इन्हें नेड़े हो गए, इन्हां प्यार पा लिया, इन्नी सांझ पा ली, प्यो पुत्रावां एकमेक हो गए। और फिर एक होर गल, वो जग भोग जोग ध्यान करने वाले तो कई बार संसार नूं छड़ के बाहर भटकते नजर आए, गुरु का सिख संसार च रहिंदिया होए, घर बार च रहिंदिया होए, परस्पर सत्कार दा अधिकारी बन के एक दूजे विच सतगुरु दे दर्शन करदा होया एक दूजे पैरी पैंदा नजर आउंदा, और इस संसार च रहिंदिया होया प्रभु दे प्यार नूं मानदिया गुरु दे प्यार नूं मानदिया होया माया विच उदास रखाया। पर एक गल है, जे तां गुरु नाल गल्लां करनियां ने ते गुर शब्द नूं विचारांगे, जे गुरु के नजदीक होना है, गुरु नाल विचार दी सांझ पाउणी है, प्यार दी सांझ पाउणी है, ते गुर शब्द दी सांझ भी पाउणी पएगी। लेकिन जे कदे गुरु नूं प्रसन्न करना होवे

कैसा पुल है भाई साहब? कहने ने एक बारी नहीं पांच बारी गंगा चला जा, पांच पांच बारी प्रयागराज रा के त्रिवेणी दे इशनान करे। एक सिख नु इशनान करा दे, एक सिख नु नहाउण वास्ते इशनान वास्ते पानी भर के दे दे, ओदे इशनान दा प्रबंध कर दे, इन्ना पुन्न है। कहिंदे ने सिख नु प्यार नाल पानी पियाता, वैसे तां सब नु ही पियाउणा चाहिए, पर गुरु के सिख नु गुरु शब्द दी विचार वाले नु गुरु प्यार वाले नु आदर सत्कार नाल पानी पिया दिता। समझ लो कुरुखेत्र दी यात्रा हो गई, कुरुखेत्र वर्गे महान तीर्थ दी यात्रा हो गई, ते जे किते सिख नु प्रसादा छका दिता प्यार नाल भाव करके, लंगर छका दिता है, ते असमेध जग कर लिया, थोड़ा नहीं बहुत वड्डा पुन्न हो गया।

राज अभी खन अधिक करो ए शब्द भगत नामदेव जी का उचारे होया। इस शब्द दे विच परमेश्वर दे नाम दी वड़ियाई अते भगतां दे नाल उस परमेश्वर दा प्यार इस शब्द तो भगत नामदेव जी सानू ए उपदेश देंदे ने, ऐ इंसान अगर तू परमेश्वर दा नाम जपेंगा ओदी ओट ओदा आसरा लवेंगा इन्हां भगतां दी तरह ओ परमेश्वर तेरी भी रखिया करेगा तैनू ओ परमेश्वर हर सुख हर वड़ियाई अते अपने नाम दे नाल भी जोड़ेगा और अपने वर्गा बना लवेगा। इस शब्द दे विच अनेका महापुरुषां दा जिक्र नामदेव जी ने कीता है, पर आपां भगत अमरीक दे जीवन बारे विचार करांगे। भगत अमरीक एक बड़े ही चक्रवर्ती और प्रतापी राजे होए ने, राजे भी सन पर राजकुमारन दे नाल भगती भी कमाई जिदे सदका अज आपां उन्हां दे जीवन बारे विचार कर रहे हैं। नामदेव जी बयान करते ने, अमरीक को दियो अभय पद, भगत अमरीक नु अभय पद की प्राप्ति हुई, जन्म मरण दे चक्कर तू ओरहत हो गए, राज पवीखन अधिक करो। जिस तरह पवीखन नु श्री रामचंद्र ने रावण नु मार के लंका दा राज दिता, क्योंकि जेड़ा भी भगत होंदा है उनु सुख परमेश्वर देंदा है, इसे तरह जेड़ा अमरीक भगत है इनु भी परमेश्वर ने बड़ी उच्ची पदवी दिती, भगतां दी पदवी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सवैये महल्ले तीजे के जिदे विच अमरीक भगत बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस तरह जिक्र कीता।

कि जिस तरह नाम सिमर के सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए, नाम नाल लग के इसे तरह अमरीक पवजल तरिया, भगत अमरीक भी संसार सागर तू पार होके बैकुंठ नू चले गए।

अम्बरीक मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा रिखी आया, अम्बरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ अस उपारना ओठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा रिखी नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अम्बरीक कहन लगा सत बचन। ए दुर्भाषा रिखी नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी दा मालिक दुर्भाषा रिखी। चाहिदा ता ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारे ने ही विचार कीती कि जापदे हुण दुर्भाषा रिखे नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अम्बरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छके

दुर्वासा ऋषि ने हुक्म किया, ओ चुड़ेल जिदे हाथ विच किरपान है, भगत अमरीक नू मारन वास्ते वधी, सारे दरबारी महापुरुष हैरान हो गए कि दुर्वासा ऋषि एक महापुरुष होके केड़ा अधर्म का काम करन लगे, पर ओ परमेश्वर हमेशा अपने भगतां दी रक्षा करता है। ए चुड़ेल मारन वास्ते अगे वधी तां भाई गुरदास जी बयान करते ने, चक्र सुदर्शन काल रूप होए पिहावल गर्भ गवाया। जिहड़ा सुदर्शन चक्र सी ओ काल रूप होके मौत दा रूप होके दुर्वासा ऋषि दे कोल आ गया। सुदर्शन चक्र ने सारिया तो पहला उस चुड़ेल दी ओ बांह वड़ी जिहदे विच उहने किरपान फड़ी सी, फिर दूसरी बांह वड़ी, फिर सुदर्शन चक्र ने उस चुड़ेल दा गला वड़ के उसका अंत कर दिता। चुड़ेल मर गई ते हुण सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के दुआले हो गया। ते दुर्वासा ऋषि जिहड़ा बड़े हंकार विच गुस्से नाल अखां लाल करके कोल खलोता सी, ओ हुण इन्ना डर गया, ये भी भुल गया कि मैं एक ऋषि हाँ, जे भजांगा तो लोग की कहेंगे, पर जान सब नू प्यारी है। ता की होया, ब्राह्मण पढ़ना जियो लै, कि ओ ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि हुण भज पिया कि किसे तरह अपनी जान बचावा। ब्राह्मण पढ़ना जियो लै रखिया ना हंगण देव सुभाया, हुण कोई भी देवी देवता इहदी रखिया करन नू तैयार नहीं, क्योंकि जिन्नू भगवान मारे उहनू फिर कौन बचावे। ए दुर्वासा ऋषि अमरीक दी सभा विच भजिया, इंद्र लोक चला गया। कहन लगा इंद्र देवते नू, मेरी जान बचा, पर इंद्र कहन लगा ए मेरे वस दी गल नहीं, ता दुर्वासा ऋषि शिव लोक नू चल पिया। शिवजी भगवान कहन लगे हुण मेरे भी वस दी गल नहीं, दुर्वासा ऋषि हुण ब्रह्म लोक नू गया। ता ब्रह्मा जी कहन लगे तेनू बचाना हुण मेरे वस दी भी गल नहीं। ता फिर दुर्वासा ऋषि बैकुंठ नू चला गया विष्णु भगवान दे कोल। ता विष्णु भगवान कहन लगे कि मवी तेनू नहीं बचा सकता। भाई गुरदास जी इस गल की गवाही देंदे ने, इंद्र लोक शिव लोक तज, ब्रह्म लोक बैकुंठ तजाया। सारे पास्यों इसनू आसरा जदू ना मिलिया, दुखी हो गया दुर्वासा ऋषि कि सुदर्शन चक्र मेरा पिछा नहीं छड़दा। ता उस वक्त देवतियां भगवान सन सिख दे सबना समझाया, देवतियां ने अते भगवान विष्णु ने सारिया ने सिख दे ए सिख्या दिती, सबना समझाया, सारिया ने समझाया है कि दुर्वासा तू भगत नू बुरा के, तू भगत नू दुख देना चाहे, इस करके अगर वो भगत चाहेगा ताई तू बच सकेगा, नहीं ता तेरा बचना बड़ा औखा है।

नवी म्यूजिक मेमोरीज इंडिया फगवाड़ा कंपनी वालों पहले शब्दों की कैसेट संगतां दे वास्ते भेट की है। सच्चा पातशाह कृपा करे कंपनी के मैंबरों अपने चरणों का प्यार सेवा करन दा बल बख्शे।

इस संसार ते कोई प्राणी एक दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो, कोई तीन, कोई दस, कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां

पता नहीं किन्ना कु सियाण है, किन्ना कु सुगड़ है। कोई हिसाब ला सकता है क्योंकि उसकी किरत का ही हिसाब नहीं लाया जाता। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन समार। तेरी दिती हुई दात की समझ नहीं आती, तेरी समझ कितों आ। तेरी दात का ही मुल नहीं पाया जाता, तेरा कौन मुल पावे। तेरी दात ही एडी सोहनी एडी खूबसूरत एडी जुगत वाली है, तू कि सियाना होगा। साहब कहते मत समझी सियाना कोई होर भी है जिसने तेन शरीर दिता है, जिसने शरीर च मन पाया, जिसने तेन वर्तन वास्ते धन दिता है, जिस दया सारिया बख्शिशा भोगदा है ओदे नालों सियाणा होर तेनू कोई मिलेगा नहीं। ते कई बार तो इन्ना भी भुलेखा लग जाता है, तू ऐसा समझने लग पैना उन्हें कोई गलती की है मैं ठीक कर दिया। जो उन्हें बनाया शायद गलत बनाया मैं उन्हें ठीक कर देवा, जो उन्हें रचिया शायद गलत रचिया है मैं सुधार कर देवा। अपने आप नूं ओदे नालों सियाणा समझ बैठा होवांगा। कोई सूरत नहीं, कोई तरीका नहीं कि तू अपने आप नूं ओदे नालों सियाणा समझ सके। जिसने तन मन धन जिन प्रभ दिया, जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खान। एक शब्द च महाराज सच्चे पातशाह ने सानू चेता कराया, चेता ही कराने वाली गल है। पता सारा है भुल जाने साहिबा ने पावन बाणी च सानू उन्हां चीजां की सारी निश्चिता नहीं आउंदी, लेकिन मोटिया मोटिया जिन्हां बिना बंदे का नहीं सरदा उन्हां दा जिक्र महाराज ने किया। तो कहने तेनू ओदा चेता है, तेनू ओदा ख्याल है, जिसने तेनू इन्ना कुछ दिता है

ऐसे सियाने प्रभु ने, सुजान प्रभु ने मेरे मन की वेदना नु, मेरे दुख सुख नु सुनिया, ते ता मैनु बहुत लाहे वंदे फल पदा प्राप्त होए। तो बिद नीकी चंगी बिद नाल चंगे ढंग नाल मैनु लाभ प्राप्त होए। ऐसे करके मैं हाथ बने ने ओदे अगे, जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तिलनी कीमत जानी। प्रभु तो बेमुख होके जिन्हें मर्जी जतन कर लिये, होमे दे भरे हुए पदार्थां नाल बजे हुए, जिन्ना मर्जी भज नठ कर लिये, ओदी कौड़ी कीमत नहीं, ओदी तिल भर भी कीमत नहीं। हां जिस दिन गुरु के हो जाइए, जिस दिन ए एहसास हो जावे जिसका दिया पहने खाए तिस्यों आलस क्यों बने माए। साहबां दी सुखमणी रोज पढ़दे सुनदे हो, जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ते आए सदा मन अंदर, जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस त रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याइए त्यावन जोग। कितना कुछ उसने बख्शिया है, किन्ना कुछ प्या मानना है, ओदे सामने सियाणा बनके ना बहो निमाणा बनके, ओदे सामने होशियार बनके ना बहो, ओदे सामने ता चाकर बन जा, सेवक बन जा, भोला बन जा। ते जिस दिन भोला बन जाएगा पायो बाल बुद्ध सुखरे स्वाद आ जाएगा, ओदिया बख्शा दा पात्र बन जाएगा। ए भावना लेके हम किछ नाही एक है ओही आगे पाछे एको सोई, ऐसी भावना लेके ते जिस दिन ए भावना लेके तुरेगा फिर गुर बोयत वड भागी मिलिया, नानक दास संग पाथर तरिया, तर जाएगा। तरन वाले होना है ते फिर मालिक दे अगे इस भावना चुकिया करिए।

श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं, छपे छंद तव प्रसाद। चक्र चेहन अर बरन जात, अर पात नहन जे। रूप रंग अर रेख पेख, को कह ना सकत केह। अचल मूरत अनपौ प्रकाश, अमितोज कहिजै। कोट इंद्र इंद्राण, साहो सहान गणिजै। त्रिपौन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन त्रिन कहत। तव सर्व नाम कथै कवन, कर्म नाम बरनत। सुमत पुजंग पर्यात छंद नमस्।

मित्र हुंदा ही होए जेड़ा मनुख दा भला लोची, जेड़ा मित्र मिले ते बुरे पासे ले जा, भला फिर और दुश्मन दी की लोड़। जेड़ा अखौती मित्र मिले, मित्रता दे ना थले बुरे पासे ले तो बुराइयां वाले पासे प्रेर ले जा, गलत कम्मा वाले पासे ले तुरे, या जेड़े मित्र दे आया जीवन दा कीमती समा आ जाई तुरिया चला जा, गलत गल्लां विच निंदा चुगली विच गलत खेडां विच गलत कारियां विच मनुख दा कर्म परिष्ट हुंदा चला जावे, ओ मित्र नहीं दुश्मन है। क्योंकि जो कर्म असी करने ने उन दा फल साडे सामने होना, अज नहीं कल नूं ऐस नहीं अगले जन्म नूं, साने कीते कर्म साडे सामने आ जाने। ते जेड़ा बंदा गलत कम्मा दी प्रेरणा करता है उहदे नाल वड्डा दुश्मन होर कौन होवे। पर मनुखे भुलेखे च पिया होया जिहदे नाल जी परच जावे, जेड़ा कोल बह के चार गल्लां करे सुने सुनावे, ओनू असी मित्र समझने। हालांकि साहिबां ने पावन बाणी